साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो। देखो, जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक, और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो, आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा के, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में, भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरे हो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ, हरिवंश नाम, राधावल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय, छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है। अपने हृदय, अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो, एक लोटा कोई पानी पिला दे, उसको जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया,
और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है। जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं। हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता। एकदम महीन, फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दैव

नहीं समझो। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो, तो का रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू क्या ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग ना चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुद छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे हैं, जो कपटी है छली है दोषों से युक्त है उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे, बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे कर्माण श्रुति बोधितान नितराम कुरवंत कुरवंत मां गूढ़ाश्चर्य रसास्त्र गादि विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा। वो महाप्रभु

शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक

इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक एक वर्ष इसमें भोजन पाएगा। एक वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुमने रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, है मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है प्रभु, जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। ताजी तीरथ

साधु। क्या आप वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो, जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं। खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं, उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं। यहां का बहुत एक एक

कर्ण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे को ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने तावन।
हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे, उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हा लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं और सब वहां हिसाब, तो उनका कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

रेडियो महारानी 89.6 के सभी श्रोताओं को देवेंद्रजीत सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस लासानी शहीदी की जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी की, जिसका पर्व जो विश्व भर में बड़ी श्रद्धा उल्लास और प्यार की भावना से और बड़ा सम्मान और आदर से मनाया जाता है हर साल। और आप देखते हैं कि सड़कों पर ठंडे पानी की छबीलें इस दिन लगती हैं और कोई भी प्यासा बिना प्यास बुझाए सेवादार उनको जाने नहीं देते, इस दिन को याद करते हैं और उनकी कुर्बानी को भी लोग प्रणाम करते हुए दिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि उनकी शहीदी कैसे हुई, क्यों हुई और किसने कराई। जन्म मरण दोहूं में नाहीं, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हरस्यो लैन मिलाए। गुरबानी के ये बोल जिनका मतलब है कि संसार में प्रभु परमात्मा समय समय पर परोपकारी मनुष्यों को भेजता रहता है, जो इस संसार में आकर जन्म और मरण से ऊपर उठकर एक परोपकार की भावना लेकर आते हैं और मानव कल्याण के लिए अपनी जान तक वार देते हैं। वो सिखाते हैं लोगों को कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भगवान के लिए प्रेम जगाते हैं, उसके लिए श्रद्धा लोगों के मन में जगाते हैं और सारा जीवन मानवता की सेवा में लगाकर, और अगर मानव अधिकारों पर कोई आँच आती है तो उसके ऊपर अपने को बलिदान करने से भी नहीं चुकते। इसको कहते हैं कि जन परोपकारी आए। वो परोपकारी लोग कभी कभी इस दुनिया में आते हैं और ऐसे ही परोपकारी थे हमारे श्री गुरु अर्जन देव जी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1563 में गोविंदवाल साहब जगह पर गुरु रामदास जी के गृह में माता भानी जी की कुख से हुआ था। आपके नाना श्री गुरु अमरदास जी ने आपको बचपन में ही एक वर दिया था, क्योंकि आप जो थे वो बचपन से ही गुरमत ब्रह्म लेकर आए थे, जिसके लिए कहा गया कि तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्या, कि आप तो बचपन से ही गुणी ज्ञानी होकर आए हो, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए आपके दादा पिता गुरु तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी जो आपके नाना थे, उन्होंने ये कहा था कि ए दोहिता बाणी का बोहिता, ये वर दिया था कि ये इतनी बाणी उचारेंगे, इतना गुरु का यश गाएंगे जिसे सारी दुनिया सुनेगी और उनका कल्याण होगा। और आप जानते हैं कि इस गुरुपुरब पर हर गुरुद्वारे में और कुछ धर्म संस्थाओं में भी 40 दिन के लिए सुखमनी साहब की बाणी पढ़ी जाती है, जिसका उच्चारण श्री गुरु अर्जन देव जी ने खुद किया था। इस बाणी को सुखों की मणि बोला जाता है कि इसको पढ़कर और सुनकर सारे कल क्लेश जो होते हैं वो मिट जाते हैं और शारीरिक रोग भी ठीक होते हैं। कई लोगों ने बताया है कि सुखमनी साहब का पाठ सुनने के बाद शराबियों ने शराब छोड़ दी, जुआरियों ने जुआ खेलना छोड़ दिया और अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर हुए। इस वाणी का प्रभाव ही ऐसा है, बड़ी सिंपल है, बड़ी शुद्ध भाषा में, उसमें काफ़ी शब्द जो है हिंदी के, इसलिए समझ में भी जल्दी आती है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन्माय मिटाओ। तो इस वाणी का जो भाव है वो उन्होंने अपने जीवन में दर्शाया। अगले वृतांत को हम आपसे साझा करेंगे, तब तक के लिए

नमस्कार, मैं हूं देवेंद्रजीत सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6। हम बात कर रहे थे गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी की और उनके जीवन के बारे में, तो आइए आगे चलते हैं। आपको भट्ट वो थे जो गुरु उस्तत में गायन किया करते थे, और 11 भट्ट हैं जिनकी बाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। उनमें से एक भट्ट हैं जिनका नाम भट्ट मथुरा है। उन्होंने कहा कि धरन गगन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रयो भर, अन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर। इसका अर्थ यह है कि धरन गगन, धरन मतलब धरती, गगन मतलब आकाश, और नवखंड मतलब जो नौ खंड हैं पृथ्वी में, उन सब में आप प्रभु की ज्योत की तरह विराजमान हो, और आप में और प्रभु में जरा भी रत्ती भर भी भेद नहीं है, क्योंकि आपको उस परमात्मा ने इस धरती पर लोगों की कल्याण के लिए भेजा है। आपका जो बचपन था और जो पालन पोषण था वो दो गुरु साहिबानों ने मिलकर किया, आपके पिता श्री गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे, और आपके नाना जैसे मैंने पहले कहा श्री गुरु अमरदास जी जो तीसरे गुरु थे। इनकी देख रेख में आपने सेवा, सिमरन, सबर, संतोष, सत्कार, नेम, प्रेम, निम्रता

उपकारता, शान स्वभाव वाले ये जितने भी दैवी गुण थे, जो प्रभु के गुण होते हैं, वो आप में समा गए थे और आपने बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं सिख धर्म में और लोगों के लिए की। आपने अमृत सरोवर की सेवा पूरी की जो आपके पिता श्री गुरु रामदास जी ने शुरू करी थी, मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। और फिर हरिमंदर साहब का निर्माण आपने किया, जिसकी नींव आपने एक मुसलमान पीर से रखकर ये संदेश दिया कि ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। और इस तरह आपने उस हरिमंदर की नींव रखने के बाद उसकी उसारी में एक बड़ा बहुत बड़ा ध्यान रखा कि उसमें चार दर्शनी देवड़ी, यानी कि उस हरिमंदर के चार दरवाजे हैं, जब आप प्रवेश करते हैं तो चारों दिशाओं से प्रवेश कर सकते हैं। और उसका जो मूल उद्देश्य था और जो मूल संदेश जाता है वो है कि वो चारों धर्मों, चारों जातियों, चारे तरह के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है, किसी भी धर्म के लोगों के लिए वो खुला है और सब कोई वहाँ आकर नतमस्तक हो सकता है, प्रभु की वाणी सुन सकता है और सेवा में भी भाग ले सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। फिर आपने जब अकाल पड़ा 1595 में, उस वक्त शाह जहांगीर अकबर का राज था और अकबर बादशाह ने बड़ी तारीफ करी गुरु साहब की, जब उन्होंने घर घर जाकर लोगों की सेवा करी, उनको दवाइयाँ बांटी, उनको लंगर बांटे, उनको कंबल बांटे, उनको पानी के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए। आपके बेटे गुरु हरगोबिंद साहब जी का जब जन्म हुआ 1595 में ही हुआ था, उनके नाम पर उन्होंने बहुत से कुएं लगवाए, क्योंकि उस समय पानी तालाबों और कुओं से ही मिलता था और कोई जरिया नहीं होता था। तो आपने लोगों की प्यास की पानी की करने के लिए, मदद करने के लिए आपने एक उनके नाम पे एक छरटा साहब में एक कुआं लगवाया जो 6 हरटों से चलता था, जो कि सबसे बड़ा होता है। हरटे रहटे वो होते हैं जो बैल बांधकर उसके पीछे वो लगे होते हैं, ड्रम से लगे होते हैं, छोटे छोटे डब्बे लगे होते हैं और वो उस पानी को भर भर के इकट्ठे 50-50, 100-100 डब्बे ऊपर भर के ले आते हैं और वो फिर फैल जाता है पानी और चारों दिशाओं में। आज जैसे फाउंटेन की हम प्रयोग करते हैं, उस ज़माने में ये रहट किया करते थे।

गुरु साहब की शहादत के बारे में कि उनको शहीद क्यों किया गया और उनके क्या मुख्य कारण थे। तो सबसे पहला कारण तो था पारिवारिक कारण। उनके गुरु रामदास जी के 3 सपुत्र थे, बड़े थे श्री पृथ्वीचंद जी, उनसे छोटे थे महादेव जी और सबसे छोटे से श्री गुरु अर्जुन देव जी। और जैसा कि मैं अपने पहले प्रसंगों में भी कह चुका हूँ कि सिख धर्म में गुरु नानक देव जी के सिद्धांत ये कहते हैं कि गुरुता गद्दी जो है, गुरु गद्दी की जिम्मेवारी जो है, वो गुणों वाले पुरुष को उसके गुणों के आधार पर मिलेगी, ना कि उसकी उम्र या उसके परिवार के ओहदे के लिए मिलेगी। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने अपने 2 पुत्रों को गुरुता गद्दी नहीं दी थी और भाई लैणा जी को दी थी जो उनका अनंत सेवक थे, इसी तरह गुरु अमरदास जी ने गुरु लैणा उनको फिर गुरु अंगद बनाया अपने अंग के साथ लगाकर। फिर उन्होंने दूसरे गुरु साहब ने भी अपने 2 बच्चों को गुरुता गद्दी नहीं दी और अमरदास जी को गुरु बनाया। और इसी तरह अमरदास जी ने भी अपने 2 पुत्रों में से किसी को गद्दी नहीं दी और उन्होंने गुरु रामदास जी जो जेठा जी थे उस वक्त और उनकी सेवा में लगे होते थे उनको दी। और इसी तरह गुरु रामदास जी के जब 3 पुत्र थे उन्होंने बड़े पुत्र को नहीं दी। आमतौर पर देखा जाता है कि पिता के बाद बड़ा पुत्र जो होता है वो गद्दी का अधिकारी बन जाता है ऑटोमेटिकली, पुराने हमारे जो इतिहास बताते हैं, लेकिन गुरु घर में ऐसा नहीं था। गुरु घर में उन्होंने देखा कि मेरा जो बड़ा बेटा है पृथ्वीचंद वो लालची स्वभाव का है, वो क्रोधी है, वो लालची है, वो लोभी है, वो दुनियादारी में ज़्यादा विश्वास रखता है, उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है और वो लोगों की सेवा नहीं कर सकता है, उपकार भी नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने उनको गुरुता गद्दी नहीं दी। और उसी तरह महादेव जी वो जो थे वो बैरागी थे, उनको किसी से लेना देना नहीं था, वो अपने में मस्त रहते थे, तो उन्होंने देखा कि ये भी जिम्मेवारी संभालने के काबिल नहीं रहेंगे। और गुरु अर्जन देव जी की उन्होंने कई परीक्षाएँ ली, एक तो वो वाणी से उनको बहुत लगाव था और गुरु साहब की सेवा उन्होंने बड़े हृदय से करी, साथ में वो आज्ञाकारी थे और उनकी 2-3 परीक्षाएं लिया, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि वो मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वो उन पे पास हुए और उन्होंने फिर गुरुता गद्दी जो थी वो अपने छोटे पुत्र जिनकी उस वक्त उम्र 18 साल थी को सौंप दी। इससे पृथ्वीचंद जी को बड़ी विरोधता हुई और वो हमेशा इस बात पर जलते रहते थे अपने छोटे भाई से और कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि वो उनको नुकसान पहुंचे। उन्होंने एक बड़ी ही ओछी हरकत करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के साहेबजादे श्री गुरु हरगोविंद साहब जी जब 3 साल के थे उनको 5 बारी मरवाने की कोशिश की, कभी सांप से डसवाने की, कभी जहरीला दूध पिलवाने की, कभी छत से गिराने की। इस तरह से इतिहास बताता है कि 5 बार वो असफल रहे, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता था। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और अगर नीयत किसी की साफ है और किसी की बद है तो बदनीयति के साथ भगवान नहीं जाता है, भगवान हमेशा सदनीयति वालों की रक्षा करता है और उनका साथ देता है, ये इस बात ये इस इतिहास से सिद्ध हो जाता है। और इस तरह उन्होंने भी जाके अपने एक मित्र जो उनके थे उनको उनके जरिए अकबर तक कंप्लेंट पहुंचवाई कि

आदि वीर गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करी, संकलन किया, जिसमें उन्होंने 5 गुरु साहिबानों की और 15 भक्तों की और 11 भट्टों की बाणी और 3 गुरसिखों की बाणी दर्ज कर रहे थे। तब कवि जो थे काहना, पीलू और छज्जू और शाहनवास, 4 कवि ये आए, इन्होंने भी अपनी रचनाएं सुनाई, लेकिन गुरुजी ने उन रचनाओं को लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये गुरु नानक के सिद्धांत पर पूरी नहीं उतरती हैं, इसलिए हम इनको दर्ज नहीं कर सकते हैं। आगे का वृतांत आगे सुनाते हैं, तब तक के लिए बने रहिए

जैसा कि आप जानते हैं कि हर समुदाय में कुछ कट्टरपंथी हुआ करते हैं और कुछ जो होते हैं वो धार्मिक स्थिति को समझते हुए धर्मी से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह के कुछ लोग जो दूसरे समुदाय में थे, उनको ये बात पसंद नहीं थी कि सांझीवालता का संदेश दिया जा रहा है और एक धर्म जो है वो पनप रहा है जो हमारे धर्म के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। और चौथा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि कहते हैं कि किसी भी कौम को अगर तरक्की करनी है तो उसके लोगों को आर्थिक समृद्धि देनी पड़ेगी, तभी वो कौम तरक्की कर सकती है। क्योंकि कहते हैं कि पेट ना पइयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। भूखा पेट काम नहीं कर सकता, भूखा पेट अच्छी बात नहीं सोच सकता, भूखा पेट अच्छा ज्ञान ले नहीं सकता ना दे सकता है। तो इसलिए भरा पेट जो होता है उसमें आदमी की सोच भी काम करती है, क्योंकि एक जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है परिवार को पालने की अगर पैसे जेब में होते हैं। पैसे, कहते हैं कि पैसा जो है सब कुछ नहीं है, पर आज की दुनिया में पैसा बहुत कुछ है। बिना पैसे की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है आज की दुनिया में, और हम आज की ही दुनिया की बात कर रहे हैं। तो आप जी ने क्या करा कि 52 तरह के जो कृति होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, उनको गुरु घर के दसवन जो दसवां हिस्सा लोग अपनी कमाई में से देते थे दान में, उस धन का प्रयोग करके उनको लोन दिए बिना इंटरेस्ट के, कि आप हमसे ये पैसे लो और जब आपका काम चल पड़े तो आप हमें लुटा देना। तो इस तरह से उन्होंने एक फाइनेंशियल स्कीम स्टार्ट करी, आज के शब्दों में कहें तो इस तरह से, जैसे कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई बुनकर है, इस तरह के जितने भी लोग थे उस जमाने, कोई लोहार है, सुनार है, जिसके पास दुकान बनाने के पैसे नहीं हैं, उनको अच्छे दुकानें उन्होंने बनवा के दी और उनको उसमें सहारा दिया पूरी तरह से, जिनको कहते हैं एस्टेब्लिश किया उनको। तो लोग जो थे वो धनी हो गए, लोगों का जो रहन सहन था वो बढ़िया हो गया। धीरे धीरे उन्होंने कच्ची झुग्गियाँ छोड़कर अधपक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, उस ज़माने में जैसे बनते थे मिट्टी से, छतें होती थी दूसरी कड़ी वाली। तो इस तरह से आपने तरक्की कराई समुदाय की, जिसमें सब शामिल थे। उसमें ऐसा नहीं था कि कोई एक धर्म या समुदाय के लोग थे, उसमें सब धर्मों के लोग थे जिनको फ़ायदा हो रहा था। और साथ में उन्होंने काबुल के साथ, जिसको कहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम शुरू किया। काबुल में आपको पता है काबुल के जो घोड़े होते हैं दुनिया के बेस्ट घोड़े माने गए हैं, तो वहाँ से सिखों को भेजकर वो वहाँ से व्यापार कराते थे, घोड़े मंगवाते थे और अच्छे दामों में घोड़े सिख बेचते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। इस तरह से उन्होंने लंगर की सेवा, दसवंद की सेवा शुरू करी और गरीब गुरबे को हर वक़्त किसी भी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो गुरु घर में आकर फरियाद करते थे और उनकी सहायता की जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कई समुदाय के लोग देख नहीं पा रहे थे कि चढ़ती कला में जो एक समुदाय जा रहा है वो क्यों जा रहा है। और चौथा और सबसे अहम और

मेन कारण जो था वो था राजनीतिक कारण। वो क्या था कि अकबर की मौत हुई थी 1605 में, और 1605 में जब मौत हुई तो उसका जो बेटा था सलीम, शहजादा सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, जो वहमों भरमों में भी विश्वास रखता था और मानवता के लिए कुछ भी करके राजी नहीं था, बस हर वक्त अपनी शराब के नशे में अयाशी में डूबा रहता था, तो उसमें ऐसा कोई गुण अकबर को नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो उसे गद्दी पे बिठाना नहीं चाहता था। उसका एक पोता था जो सलीम का ही बेटा था जहांगीर का, खुसरो नाम था उसका, वो अपने दादा के साथ बड़ा हुआ, दादा की सीख उसने ली, उसका किरदार अकबर को पसंद था और वो चाहता था कि भारत की बागडोर जो है, हिंदुस्तान की जो बागडोर है, वो एक अच्छे इंसान के हाथ में दी जाए, इसलिए ये भी एक कारण बना। आगे बात करेंगे कि आगे क्या हुआ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई, और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी ही है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिएगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो
4: इरशाद।
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।
3: बाकी सब फर्स्ट क्लास है।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मनु दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। अब बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ। एपीके फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपीके फाइल। तो आखिर ये एपीके फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपीके फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए एप्स की तो ऐप स्टोर या फिर एक ट्रस्टेड ऐप साइट से ही किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी सस्पिशियस फाइल मिलती है उसे जरूर वेरीफाई कीजिए। बैंकिंग अलर्ट्स और परमिशन रेगुलरली चेक करते रहिए सो दैट कि आपको पता रहे कि आपके फोन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में क्यूरियोसिटी से पहले ना थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। एक रॉन्ग क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई रिस्क में डाल सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी आपने सोचा एक छोटा सा सॉरी कितनी कमाल की चीज करता है हमारी लाइफ में? जितना भी खराब रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन एक सॉरी उस रिलेशनशिप को हील कर देता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। और अगर बात करें सॉरी की, तो सॉरी बोलना आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये जानता है, सबसे पहले तो हमें ये देना ये याद दिलाता है कि जो ईगो है ना वो बहुत छोटा, यानी कि हमारा रिलेशनशिप हमारे ईगो से बड़ा है। सेकेंड थिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है सॉरी बोलने से, हीलिंग और पॉजिटिविटी आती है। और कभी कभी ना हम अननोइंगली किसी को हर्ट कर देते हैं, ऐसे में एक जेन्युइन अपोलॉजी बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। और सॉरी बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है वो आज मैंने आपको बताया ही है, लेकिन आपको पता है स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते जो कभी गलत नहीं करते, स्ट्रॉन्ग वो है जो दिल से सॉरी बोल सकते हैं। सो इसलिए आज एक चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर किसी से बात पेंडिंग है तो मे बी टूडे इज द राइट डे टू फिक्स इट। सॉरी बोलकर आज का दिन फिर से एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप को फिर से हील कीजिए, एक और मौका दीजिए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। लेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
0: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आ गई हूँ। और यार, जब बात करते हैं ना डेली रूटीन की, तो कितना सारा काम करते हैं, लेकिन उस रूटीन में कभी आपने सोचा है कि एक ब्रेक लेना कितना ज्यादा जरूरी है? आई नो काम इम्पोर्टेंट है, पर रिचार्ज होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज मैं एक स्टडी लेकर आई हूँ, एंड स्टडीज के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप वर्क स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नड आउट को इंक्रीज कर सकता है। सो भाई, यहाँ पर ना एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेगुलर शॉर्ट वेकेशंस या ब्रेक लेना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपना एक ट्रिप छोटा सा प्लान कर लीजिए। अब बात करें इस नॉन स्टॉप वर्क के इफेक्ट की, तो भाई सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाता है, कॉन्स्टेंट फटीग को इंक्रीज करता है, पुअर स्लीप और साथ ही इमोशनल एग्जॉशन, ये सारी चीजें होती है जब आप नॉन स्टॉप काम करते हो, स्पेशली हाई प्रेशर जॉब्स में ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कॉमन हो जाती है भाई। सो वेकेशंस के फायदे तो हैं, हमारा माइंड फ्रेश करता है, क्रिएटिविटी और फोकस को इम्प्रूव करता है, एंड साथ ही प्रोडक्टिविटी बेटर होती है और मूड भी हैप्पियर फील करता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मशीन भी रेस्ट करती है, लेकिन हम तो इंसान है तो हमें तो डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए। और वेकेशंस का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं होती, कभी कभी बस थोड़ा सा ब्रेक ही इनफ होता है। सो वर्क हार्ड करिए, पर रिचार्ज होना मत भूलिए, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो।
1: कैसी? लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
2: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: की नचले।
1: जहां सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ, सुनना ना भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

क्या कभी सोचा है कि एक क्लिक, बस और बस एक क्लिक, और पूरा फोन हैकर्स के कंट्रोल में जा सकता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि साइबर क्राइम किस तरीके से बड़ी आसानी से हो सकता है। आजकल अगर बात करूँ ना, तो मार्केट में एक नया स्कैम आ गया, और स्कैम ये है कि व्हाट्सएप पर फेक लॉकडाउन नोटिस PDFs बहुत जोरों से वायरल हो रहे हैं, जो बिल्कुल ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिस की तरह दिखता है। फिर क्या, लोगोस भी सेम है, फॉर्मेटिंग और अर्जेंट लैंग्वेजेस के साथ ये PDFs आए हैं सामने। लेकिन पता है यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की फाइल आपको मिलती है तो ये पूरी तरह से डेंजरस हो सकती है। सो इस तरह की फाइल से आपको पूरी तरह अवेयर रहना है। सबसे पहले अगर बात करें तो इस फाइल से हो सकता है, पहले तो आपका फोन हैक हो सकता है, पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, साथ ही बैंकिंग डिटेल्स रिस्क में आ सकती हैं। सो अब बात करते हैं कि आखिर बचना कैसे है। जितने भी अननोन PDF या फिर लिंक्स हैं, उन्हें ओपन ना करें, फॉरवर्डेड मैसेज ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, ऑफिशियल अपडेट्स और ट्रस्टेड गवर्नमेंट सोर्सेज को ही चेक करें, साथ ही फोन सिक्योरिटी और अपडेट्स ऑन रखें। और इसी के साथ बस ये कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में हर अर्जेंट मैसेज सच नहीं होता, अक्सर फियर और पैनिक क्रिएट करके ही स्कैमर्स लोगों को ट्रैप करते हैं, इसलिए कहा जाता है अलर्ट रहिए, वेरीफाई करिए और सेफ रहिए। इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।

0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
0: बाय।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारे हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए, ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें?
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरिया है ना वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना, वो हमको नहीं पता होता। तो कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे लगता है जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई कि वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ, ताकि कोई भी चांसेस अगर वो बैक्टीरिया के रह गए हैं ना वो भी खत्म हो जाए। दूसरा, फ्राइड और जो आपके बाहर रोड साइड फूड होता है, मतलब देखो बहुत लोगों का बिजनेस है वो, देखो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, बट आपकी अपने शरीर के प्रति भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो स्ट्रीट फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो, अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो, बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो
0: जी,
1: उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉयल होने दो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना है तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉयल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबित काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक ऑल्सो। हल्का सा अदरक की तीन चीजें उबालनी, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया, छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद, बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है? अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप ना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी कर लूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव। अगर दो चीज सुनी है ना, एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, मैं तो सुन के जाओ। हेलो, सुन के

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं। गर्मी में वही करें ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तब ये स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका ही नेचुरली आपकी, और इसके अंदर से

0: जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता जी, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है
1: जी,
0: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में। तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिनरल्स और वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब ऐड ऑन कर दो। दूसरी, हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खा के आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के को मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को। तो आप इस तरीके से सब चीजों को ऐड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज हम इनसे बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन सीजन की। तो राधिका जी ये बताइए, मॉनसून में डाइजेशन इश्यूज सबसे ज्यादा होते हैं, उनसे बचने के लिए कोई प्रैक्टिकल टिप जो हमारे लिसनर्स घर बैठे कर सके और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव हो।
1: अगर आप इस मौसम में हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है इसलिए इन्फेक्शन भी जल्दी कैच है, ठीक है। अगेन इम्यूनिटी वीक इसलिए है क्योंकि हम आउटसाइड फूड्स, कितना भी हम कह लें हेल्दी फूड, घर के अंदर माँ चार दिन बना के दे देगी, बच्चे खा लेंगे, बट एट द एंड उनको बाहर के वो जो मसाले मिर्च और स्ट्रीट फूड इनकी हैबिट है और वो इन्फेक्शियस है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया स्टिक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपकी इम्यूनिटी वीक है और आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लोटिंग होती है इस टाइम पे। अच्छा, ब्लोटिंग भी हर किसी को ना, कोई किसी को इस मौसम में एसिडिटी हिट करती है, किसी को ब्लोटिंग हिट करती है, डिपेंड्स कि आपकी जो बॉडी है वो वात पित्त या कफ में से किस चीज को हिट करती है। हर किसी का बॉडी को एक ही तरीके से नहीं हिट करती है, राइट। तो इम्यूनिटी वीक आपकी तीनों ही वे में हो सकती है, कि किसी को एसिड बना रही है कोई चीज की, आपने जैसे खा लिया, और क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है वो गर्मी में बहुत पीकते हैं, इवन विंटर्स में भी अगर आप ढंग से खाओ वो प्रॉपर वर्क करते हैं, लेकिन जो ये मॉनसून वेदर होता है ना, इसके अंदर वो आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है, राइट
0: जी।
1: तो इस मौसम में वो इन्फेक्शन इसलिए बहुत जल्दी कैच करता है क्योंकि हमारे खाने की हैबिट्स ठीक नहीं होती है इस टाइम पे, इम्यूनिटी को हिट कर देता है। और फिर जो ये हेल्दी सिरप्स है ना, ये आपको बैलेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आप प्रॉपर एक हेल्दी वे में लो, आप दलिया खिचड़ी ये सब चीजें अपने एटलीस्ट वन मील में तो रखो, मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए भी खुद के लिए भी वो बहुत आपको हेल्प आउट करते हैं इस चीज को हैंडल करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज आपने हमारे लिसनर्स को बहुत फ्रूटफुल बातें बताई हैं जो हमें इस सीजन जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और बातों का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है, लेकिन कल फिर से मिलेंगे आपके साथ, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे कि इस बदलते सीजन में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, प्यारा सा ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

Anjali. शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। से पहले चर्चाएं होती हैं जैसे फरीदाबाद के गलियारों की। बात करते हैं सबसे पहले मौसम की, जहां 10:06 इस वक्त हो रहे हैं। और मौसम की बात की जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान फरीदाबाद शहर का बना हुआ है। बात की जाए मौसम की तो इस वक्त देखिए गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आज के दिन भी वैसे बात थी कि बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन अब ऐसी ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। फिर से मौसम चेंज होता नज़र आ रहा है कि अब गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। एक भी इसी दौरान 74 से आज बिल्कुल डबल होता नज़र आया, 140 तक पहुंचते छूते नज़र आ रहा है। एक तो एक मेंटेन करना भी हमारा ही फ़र्ज़। जहां जहां पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे हम लोग बात करें कापूल करके, पास गार्डन सोसाइटीज़ में वाटर फॉगिंग करके, एक एक मेंटेन करें। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर से पहले फरीदाबाद की गलियां। यहाँ अब हम बातें करते हैं दोस्तों फरीदाबाद शहर में जो स्वच्छता ऐप और FCM 311 एप्लीकेशन की अगर बात की जाए जो कि आप प्ले स्टोर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लोगों को घर बैठे इन दिनों शिकायतों का समाधान मिल रहा है। जी हाँ, पिछले दिन कमिश्नर साहब ने ये बात कही थी कि जो मॉनिटरिंग भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन, चाहे स्वच्छता है चाहे 311 एप्लीकेशन है, इस पर मॉनिटरिंग की जाएगी टाइम टू टाइम ताकि जो भी शिकायतें हैं उस पर आ रही हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। जी हम अब 311 की अगर बात की जाए चाहे वो स्वच्छता ऐप हो, ये वो एप्लीकेशन है जहाँ अगर फरीदाबाद शहर में रहते हैं आपको कोई भी कंप्लेंट है, किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से कंप्लेंट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा और उस नंबर के बेस पे बाद में आप पूरी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के देखा जा रहा है कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें जिससे कि लोगों को एक तो आना जाना बचेगा, आपको ऐसे मौसम में कहीं भी आना जाना नहीं पड़ेगा और समस्याएँ जल्दी सुधार की जा सकेंगी बिकॉज एक ईजी मॉनिटरिंग लेवल मेंटेन होता नजर आए। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं इस साइबर फ्रॉड्स के बारे में, जहाँ देखिए क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे अननोन ग्रुप्स में ऐड करना, अननोन नंबर से लिंक भेजना, कभी वीडियो कॉल करना, कभी कोरियर्स के नाम पे फ्रॉड, तो कभी बिल्स के नाम पे, तो कभी समर वेकेशंस के नाम पे आए दिन फ्रॉड होते नजर आ रहे हैं। तो आप सबसे यही कहूँगा थोड़ा सतर्क रहें, अवेयर रहें, और कुछ भी आपका ऐसा नुकसान होता है, कोई फ्रॉड होता है, सबसे पहले 1930 जो पुलिस डिपार्टमेंट ने, साइबर डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है कि इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जल्दी आपको सुविधा दी जाएगी और आप तुरंत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट हुआ है तो उसे इन बिटवीन फ्रीज किया जा सकता है, जिसकी आपकी कमाई बच जाए। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों सिनेमा के गलियारे में आप सभी का स्वागत है और चर्चा करने वाला हूँ सिनेमा के गलियारे में बहुत से ऐसे गानों की तो कहीं मेहमानों की। मेहमान इसलिए कुछ के डेब्यू स्टार्स की होगी एंट्री तो सिनेमा के गलियारों के लिए तो है ही मेहमान। नए हैं स्टार्स की एंट्री तो कहीं है डेब्यू डायरेक्टर्स का, कहीं होगी नई कहानियों का आगाज तो कहीं है नए ट्रेलर टीजर की अनाउंसमेंट, नए प्रोमोस और नए पोस्टर्स, नए लुक्स हो रहे हैं रिवील ऑन सोशल मीडिया। हिंदी पट्टी से लेकर के साउथ इंडस्ट्री का है कमाल तो कहीं है पंजाबी गानों का धमाल। बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक की चर्चाएं आप सबके लेकर के आया हूं, जहां होंगी सिल्वर स्क्रीन से ओटीटी प्लेटफॉर्म तक की बातें। लेकिन दम जाइए थोड़ा, ये सारी चर्चाएं करूंगा फिल्मी गलियारे में घुमाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुना देता हूं कुछ दमकदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके और ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए।

0: बन्नों की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, आज बंदा है ये खुद से बेगाना।
2: ए जय माता जी ने हम कहीं ने कहूँ के वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से आज की बात का। बात की जाए तो सबसे पहले प्रहार द उज्ज्वल निगम स्टोरी की थिएट्रिकल रिलीज जो 7 अगस्त को ऑफिशियली अनाउंस की जा चुकी है। फिल्म को विहार शरण डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार राव। कास्ट में होंगे मेन किरदार में साथी पामी का कब्बी, जयदीप अलावा सिकंदर खेर भी रोल पे नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि उज्ज्वल निगम की लाइफ और करियर से इंस्पायर्ड बायोलॉजिकल ड्रामा है। टाइटल अनाउंसमेंट के साथ मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लान शेयर भी किया है। राजकुमार राव इस टाइप के परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल्स के लिए नोन है, इसलिए यह प्रोजेक्ट काफी अटेंशन ले रहा है। दिनेश विजन और राजकुमार राव का ये एक और कोलैबोरेशन होगा जो फिल्म की बस को और बढ़ा रहा है। अब इंतजार रहेगा प्रहार द उज्ज्वल निगम स्टोरी 7 का कि ये रिलीज की जाए और राजकुमार राव का किरदार देखने को हर कोई बहुत ज्यादा उत्सुक भी है। बाकी ऐसे चर्चाएं तो और भी होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं दोस्तों लग जा गले की रिलीज के बारे में, जहाँ 14 मई 2027 को इसको लॉक किया गया फॉर रिलीजिंग। राज मेहता के डायरेक्शन में बन रही कहानी, जहाँ टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर और लक्ष्य लीड किरदारों में होंगे। एक्शन रोमांचिक एंटरटेनर कहानी। रिलीज डेट का मेंशन मल्टीपल ट्रेज पे होता नजर आया। टाइगर और जानवी की पेयरिंग फर्स्ट टाइम फिल्म में आ रही है, इसलिए बजट को काफी अटेंशन भी मिल रही है। लक्ष्य का रोल भी स्टोरी में बेहतरीन और इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। क्या ये लव ट्राइंगल होगा या फिर कोई फ्रेंडशिप या कहीं ऑपोजिट कोई एक्शन से भरपूर यहाँ पर रिवेंज लेने आ रहा है। अब देखते हैं राज मेहता ये कहानी लेकर के आ रहे हैं तो क्या कुछ धमाल होगा, रहेगा इंतजार इसको देखने का। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
7: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
8: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं अब बंटवारा कहानी के बारे में जो 1947 पे बेस्ड होने वाली है। 14 अप्रैल 2026 को कहानी रिलीज की जाएगी। फिल्म पहले लाहौर 1947 के नाम से थी और अब इसे नाम बदल दिया गया, जहाँ सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल मेन किरदारों में होंगे। मोशन पोस्टर के साथ टाइटल चेंज कंफर्म किया गया और बंटवारा थिएटर्स में रिलीज होने को लेकर के फैंस बहुत उत्सुक है। फिल्म को राजकुमार राव संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और आमिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह पार्टीशन एरा ड्रामा है, इसलिए इंडिपेंडेंस डे वीकेंड रिलीज स्ट्रेटेजी मानी गई। अब देखते हैं एक बार सनी देओल फिर से वो ही कहानी, उसी दौर की कहानी को सबके सामने लेकर के आ रहे हैं सनी पाजी बंटवारे के दौरान। देखते हैं इस बार क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसमें क्या फोकस रखा जाने वाला है। मेन कहानी की स्ट्रीमिंग में रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी चर्चा होते रहेंगे, उससे पहले एक और ट्रैक।

फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से आगे बढ़ते हुए एक और बढ़िया कहानी के बारे में। एक कहानी से पहले बात करता हूँ कुछ स्टार्स की। जहाँ बात की जाए फॉर्च्यून इंडिया 26 की लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर हैं, उसके बाद SRK, प्रियंका चोपड़ा, जोनस ऑर्डन, रणवीर सिंह। फॉर्च्यून इंडिया इंटर ब्रांड लिस्ट के अकॉर्डिंग कोहली की ब्रांड वैल्यू लगभग 542 करोड़ रुपए आंकी गई। SRK 3000 करोड़ पर पहुंचे तो वहीं प्रियंका चोपड़ा 2500 और रणवीर 2000 करोड़। टॉप 10 में MS धोनी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ जैसे नाम शामिल है। सेलिब्रिटीज की वैल्यू में स्पोर्ट्स और सिनेमा दोनों का स्ट्रॉन्ग मिक्स है और बॉलीवुड साइड से SRK सेकंड पोजीशन पर। और बात की जाए यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा थर्ड पर हैं, रणवीर सिंह फिफ्थ पर आते हैं। इसका मतलब ब्रांड वैल्यू के हिसाब से फिल्म स्टार अब भी इंडिया के सबसे पावरफुल पब्लिक फेसेस में से हैं, इवन दो कोहली ओवरऑल लीडर बनते नजर आ। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले और ट्राई।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, मैं तो सुन के जाओ। हेलो।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान।
1: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
1: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
3: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
3: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्म। यहाँ अब हम बात करते हैं जहाँ वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर। कैलेंडर आज पहुंच चुका है 18 जून पर और आज बर्थडे उस एक्टर का जिनकी पर्सनालिटी में चार्म है, एक्टिंग में क्लास और स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग ही ग्रेस। 90s के दौर में जब रोमांटिक हीरोज का बोलबाला था तब एक एक्टर ने अपनी सिंपलिसिटी और नेचुरल एक्टिंग से लाखों दिल जीते। चाहे रोमांटिक हीरो हो या फिर इंटेंस करेक्टर हो, पावरफुल विलन ही क्यों ना हो, हर अवतार में उन्हें ऑडियंस को इम्प्रेस किया। आज बात करेंगे ऐसे ही टैलेंटेड स्टार की, कौन है वो, क्या नाम है, कौन से किरदार निभाए, कितने बेहतरीन कहानियां रही, सारी चर्चाएं करने वाला हूँ विलन का किरदार हो चाहे रोमांटिक हीरो का। लेकिन नाम बताने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और सुना देते हैं कुछ खूबसूरत से गाने।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे आज एक बढ़िया स्टार के बारे में जिनका नाम है अरविंद स्वामी। अरविंद स्वामी का नाम आते ही 90s का एक आइकॉनिक दौर याद आ जाता है। 1992 में लेजेंडरी डायरेक्टर मनी रत्नम की फिल्म रोजा ने उनके रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म की कहानी, म्यूजिक और अरविंद स्वामी की स्क्रीन प्रेजेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई और फिर आई एक कल्ट क्लासिक। बॉम्बे में उनका शेखर का कैरेक्टर आज भी याद किया जाता। फिल्म का म्यूजिक, इमोशंस और उनकी परफॉर्मेंस ने इसे इंडियन सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल कर दिया। मिनसारा और थानी जैसी के प्रोजेक्ट्स में उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सालों तक उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और अपने बिजनेस पर फोकस किया, लेकिन कम बैक के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी, बल्कि पॉपुलैरिटी और इंक्रीज होती नजर आई। ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं एक बेहतरीन स्टार के बारे में, जी हाँ, जिनका नाम है अरविंद स्वामी। कई एक्टर्स हीरो के रूप में याद रखे जाते हैं, लेकिन अरविंद स्वामी उन चुनिंदा एक्टर्स में हैं जिन्होंने हीरो और विलन दो रोल्स में ऑडियंस का दिल जीता। थानी की बात करें, यहाँ इस कहानी में उन्होंने सिद्धार्थ अभिमन्यु कैरेक्टर निभाया, जहाँ साउथ सिनेमा के मोस्ट आयश विलियंस में काउंट होता है। आज भी उनकी काम, डायलॉग डिलीवरी, क्लासी पर्सनालिटी और एफर्टलेस एक्टिंग फैंस को पसंद आती है। आप बताइए कि आपको अरविंद स्वामी रोमांटिक हीरो के रूप में ज्यादा पसंद आए या फिर विलन के किरदार में। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। करूँगा निरोबाते, तब तो सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या आप जानते हो, एक वक्त था जब इंडिया में बैडमिंटन सिर्फ एक इंडोर गेम माना जाता था, और एक लड़की थी जो इस गेम को वर्ल्ड मैप पर ले जाने वाली थी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और ये कहानी है साइना नेहवाल की, एक ऐसी लड़की जिसने ना सिर्फ मेडल

जीते बल्कि सोच बदल दी। हरियाणा के हिसार में पैदा हुई साइना का बचपन सिंपल था, ना कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, बस एक चीज थी और वो थी डिसिप्लिन। जब फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हुई तब साइना सिर्फ 8 साल की थी, स्विमिंग सीखने गई और वहां एक बैडमिंटन कोर्ट ने उसका हाथ थाम लिया। शायद उस दिन साइना को भी नहीं पता था कि ये रैकेट एक दिन देश का सर ऊंचा करेगा। रोज स्कूल, फिर ट्रेनिंग, बाकी बच्चे घर जाते थे, साइना पसीने के साथ अपना फ्यूचर लिख रही थी। लोग कहते थे लड़की है, ज्यादा दिन नहीं खेलेगी, पर साइना चुप थी क्योंकि उसका जवाब कोर्ट पर लिखा जा रहा था। और आगे कैसे उनकी सपनों की ट्रेनिंग बढ़ती गई करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

चैंपियंस बनते नहीं, चैंपियंस तैयार किए जाते हैं। पुलेला गोपीचंद एकेडमी, यहाँ सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आज हम लोग कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं साइना नेहवाल की। सुबह 4 बजे उठना, फिजियो, ड्रिल्स, प्रैक्टिस मैचेस और फिर वही रूटीन रोज। साइना कई बार थकी थी, कई बार रोई भी, इंजरीज ने बॉडी को तोड़ दिया, पर हौसला नहीं टूटा। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब चैंपियंस अपने सपनों के साथ झगड़ते हैं, जागते हैं। पैसे कम थे, प्रेशर ज्यादा था, पर साइना के पेरेंट्स ने उनका सपना कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने सीखा कि हार सिर्फ एक रिजल्ट होता है, एंड नहीं। और फिर एक दिन उनका नाम इंटरनेशनल कोर्ट्स पर गूंजने लगा, और फिर कैसे पूरी दुनिया ने इंडिया की इस बेटी को देखा, करेंगे इसके बारे में बात। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक गाना। वापस आकर बात करने वाले हम लोग साइना नेहवाल की आगे की जर्नी के बारे में। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कड़ी प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत हमेशा एक इंसान को चैंपियन बना देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं साइना नेहवाल की। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, स्टेज बड़ा था, प्रेशर और भी बड़ा। और ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इंडिया के लिए एक अनाउंसमेंट था। और फिर साइना नेहवाल जीत गई ब्रॉन्ज मेडल। पूरा इंडिया हैरान था, बैडमिंटन हिस्ट्री बन चुकी थी। साइना सिर्फ मेडल नहीं जीत रही थी, वो हर उस लड़की का भरोसा जीत रही थी जो चुपचाप सपने देखती है। इंटरनेशनल टाइटल्स आने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि साइना सिर्फ अभी शुरू हुई है। जब एक लड़की जीतती है ना, तो सिर्फ एक नाम नहीं जीतता, पूरी सोच जीत जाती है। तो ऐसे ही साइना नेहवाल धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ती गई और वर्ल्ड नंबर वन वो कैसे बनी, करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

दुनिया में हर एथलीट अपने आप को नंबर वन पर जरूर देखना चाहता है और इसके लिए वो रोज जी तोड़ मेहनत करता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2015, वो दिन जब साइना नेहवाल बनी वर्ल्ड नंबर वन। और इस नंबर के पीछे सिर्फ मैचेस नहीं थे, इसके पीछे थी सालों की मेहनत और सालों का सैक्रिफाइस। पर सक्सेस के साथ आई स्ट्रगल्स, इंजरीज, फॉर्म मिस हुआ, फॉर्म लॉस हो गया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया और लोग बोले अब साइना पहली जैसी नहीं रही। पर चैंपियन वही होता है जो आवाजों से नहीं अपनी मेहनत से बोलता है। साइना ने कड़ी मेहनत करी, साइना ने कमबैक किया, गिरी फिर उठी और हर बार खुद को याद दिलाया कि मैं यहां तक आई हूं तो आगे भी जा सकती हूं। और ऐसे ही साइना नेहवाल बन गई एक लेजेंड। और आगे उनका रास्ता कैसे बनता चला गया करेंगे इसके बारे में बात, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इंडिया में जब भी एक एथलीट खेलने जाता है तो कोई मीडिया कवरेजेस नहीं मिलती, और जैसे ही वो कोई मेडल ले आए तो सारे मीडिया हाउसेस उसके आगे पीछे जाते हैं, और फिर उसके बाद आता है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबसे लाइफ का डिफिकल्ट फेज, और उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म वाला फेज। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड हर एक एथलीट की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब वो रिटायरमेंट ले लेता है, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में साइना नेहवाल की। और आज शायद साइना कोर्ट पर रोज ना दिखे, पर हर कोर्ट उनकी कहानी जरूर दिखाती है। आज जब भी कोई लड़की रैकेट उठाती है उसमें साइना का रिफ्लेक्शन होता है। साइना ने सिखाया बैकग्राउंड छोटा हो सकता है लेकिन सपना नहीं। मेडल्स शेल्फ पर रखे जाते हैं पर इंस्पिरेशन दिल में रहती है। और साइना नेहवाल ने सिर्फ बैडमिंटन नहीं खेला, उन्होंने एक जनरेशन को खेलना सिखा दिया, और इसी के साथ साथ उन्होंने साल 2026 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वर्ल्ड नंबर वन क्रिकेटर विराट कोहली हो या फिर हमारे द लेजेंड सचिन तेंदुलकर, सब ने उनकी यात्रा के लिए थैंक्स बोला। सब ने थैंक्स बोला कि उन्होंने इंडिया को एक अलग पहचान दी और इंडिया को बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच साइना नेहवाल फ्रॉम द होल टीम ऑफ रेडियो महारानी। एंड इसी के साथ साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हट

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है विशाल डडलानी की आवाज में फ्रॉम द मूवी ब्रदर्स, और इस गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और आज एक और कहानी आपको सुनाने आई हूँ, एक और बिजनेस टाइकून की कहानी, कैसे एक बिजनेस बनता है और कैसे उसमें स्ट्रगल की जाती है, ताकि जितने भी हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे इंस्पायर हो सके और जहाँ भी रुक रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो जो डर है वो खत्म हो जाए। तो आज की कहानी एक ऐसी है जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जब हर दूसरा इंसान स्टार्टअप, फंडिंग, वैल्यूएशन की बात करता है, तब कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि असली बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है। एक आइडिया से नहीं, एक डिग्री से नहीं, होती है सोच से। और आज की कहानी एक ऐसी ही सोच की है जो ना लग्जरी में पैदा हुई, ना पावर से, बल्कि सादगी और सेवा से। सोचिए जरा, 1800 के दशक का भारत, न इंटरनेट, न मॉडर्न एजुकेशन, न बड़े सपने दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स, और उसी दौर में एक बच्चा जन्म लेता है एक गरीब मारवाड़ी परिवार में। घर में ज्यादा कुछ नहीं, न पैसे की अबंडेंस, न रिसोर्सेज की भरमार, लेकिन उस बच्चे के भीतर एक चीज बहुत ज्यादा थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। आज बिजनेस अनप्लग में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी में दौलत आई लेकिन वो कभी दौलत के पीछे नहीं भागे, जिसके पास सब कुछ हो सकता था लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ देने का साहस रखा। और ये कहानी तब इंटरेस्टिंग बनती है जब आप ये जानते हैं कि ये इंसान सिर्फ बिजनेस से नहीं जुड़ा बल्कि देश के सबसे बड़े मूवमेंट का हिस्सा भी रहा। लेकिन अब हम किसी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो किसी को एंटरप्रेन्योर बनाती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना सिर्फ कंपनी खड़ा करना नहीं होता, एंटरप्रेन्योर होना होता है अपने वैल्यूज पर टिके रहना, चाहे हालात कैसे भी हो। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौट कर आऊंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: yes, yes. Say it again.
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
3: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
2: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से जी।

गाने का नाम है अनस्टॉपेबल और गाना है सिया की आवाज में, और इसी गाने के साथ स्वागत है। और मैं बात कर रही थी एक ऐसे नाम की जिन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज्यादा, लेकिन वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। अब वक्त है उस नाम को लेने का जिनकी वजह से आज की कहानी हमारी बन जाती है, और उनका नाम है सेठ जमनालाल बजाज। हाँ, वही जमनालाल बजाज जिन्हें आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिन्होंने कभी खुद को इंडस्ट्री से ऊपर नहीं समझा। 4 नवंबर 1889, राजस्थान के जयपुर रियासत का सीकर इलाका, एक गरीब मारवाड़ी परिवार, न विरासत में दौलत, न एजुकेशन में कोई बड़ा बैकग्राउंड। जमनालाल बजाज सिर्फ 4थी कक्षा तक ही पढ़े हुए थे। आज के दौर में जहाँ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स आइडेंटिटी बन चुके हैं, वहाँ ये फैक्ट अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन जिंदगी ने उनके सामने बहुत जल्दी एक टर्निंग पॉइंट रख दिया था। अब जमनालाल बजाज सिर्फ 5 साल के थे तब वर्धा के सेठ पचराज ने उन्हें गोद ले लिया। अब सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा अचानक एक बड़े घर का हिस्सा बन जाता है। प्रॉपर्टी, वेल्थ, रिस्पेक्ट, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से उनकी असली पहचान शुरू होती है, क्योंकि जमनालाल उस वेल्थ से इम्प्रेस नहीं हुए। उनके लिए पैसा कभी एंड गोल नहीं था, और यही वजह थी कि बचपन से ही वो दूसरों से अलग दिखते रहे। एक बार सेठ बचराज के परिवार को एक शादी में जाना था। घर के सभी लोग शाही कपड़ों, गहनों में सजे हुए थे। जमनालाल से कहा गया कि वो भी हीरे पन्नों से जड़ा हार पहने, लेकिन जमनालाल ने साफ मना कर दिया। उनके लिए दिखावा हमेशा से ही बहुत अलग रहा था। ये छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई कि पिता पुत्र के बीच अनबन हो गई, और 17 साल की उम्र में जमनालाल घर छोड़कर चले गए। बाद में इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर अपने पिता को लिखकर भेजा, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, तन पर जो कपड़े हैं बस वही पहने जा रहा हूँ। जिंदगी में कभी आपका एक पैसा लेने अदालत नहीं जाऊंगा। सोचिए, 17 साल का एक लड़का इतनी क्लैरिटी के साथ इतना बड़ा फैसला ले रहा है। बाद में उन्हें ढूंढा गया, मनाया गया, वो घर लौटे, लेकिन मन से वो संपत्ति का त्याग कर चुके थे। और यही वजह थी, जब विरासत में उन्हें संपत्ति मिली तो इन्होंने उसे अपने लिए नहीं, समाज के लिए इस्तेमाल किया। जमनालाल खुद को मालिक नहीं, ट्रस्टी मानते थे, और शायद यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो इन्हें एक नस्लेस नहीं बनाता बल्कि एक इंस्पिरेशन बनाता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे था उनका बचपन, उनकी एडुकेशन और वो वैल्यूज जो इन्होंने कम उम्र में सीख ली थी। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ जमना लाल बजाज के बारे में। सिर्फ अमीर परिवार में पले बड़े इंसान नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर चीज को यूज नहीं क्वेश्चन करते थे। अब जिंदगी के इस मोड़ पर उनके सामने सब कुछ था, पैसा, पहचान, सुरक्षा, लेकिन इनके अंदर एक डिस्कम्फर्ट था। इन्हें लगता था कि कम्फर्ट बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि कम्फर्ट सवाल पूछने से रोक देती है और जमना लाल बजाज सवाल पूछने वालों में से थे। यहीं से उनकी थिंकिंग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं रही, इन्होंने खुद से पूछा, अगर मेरे पास इतना है तो समाज के पास क्यों नहीं, आज मैं सुरक्षित हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं। यही वो फेज था जहां जमना लाल बिजनेसमैन बनने से पहले ह्यूमन बीइंग बने। उन्होंने अपने पैसे को पावर नहीं बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई और यही माइंडसेट इन्हें महात्मा गांधी के करीब ले गया। महात्मा गांधी से इनका रिश्ता फैन फॉलोअर वाला नहीं था, वो रिलेशन था वैल्यूज का, ट्रस्ट का और डिसिप्लिन का। गांधी जी ने इन्हें सिखाया कि वेल्थ का मतलब कलेक्ट करना नहीं, सर्कुलेट करना होता है और यहीं से जमना लाल के डिसीजंस बदलने लगे। वो सोचने लगे कि बिजनेस अगर करना है तो ऐसा जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं लोगों की जिंदगी में भी इम्पैक्ट छोड़े। इनके लिए प्रॉफिट गोल नहीं था, आउटकम था, गोल था सेल्फ रिलायंस। यही सोच आगे चलकर बजाज ग्रुप की बैकबोन बनी। लेकिन अभी तक एक चीज मिसिंग है, सोच तो बन गई, वैल्यूज भी क्लियर हैं, पर सवाल ये है इस सोच को स्ट्रक्चर कब मिला, ये आइडियाज एक्चुअल कंपनी में कन्वर्ट कब हुआ और बजाज सिर्फ एक नाम नहीं एक लेगेसी कब बना। कहानी बताऊंगी आपको, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं गीत हूँ और अब बात करते हैं बिजनेस की। नो इमोशन, नो इंस्पिरेशन कोट्स, ओनली स्ट्रक्चर, डेटा और रियलिटी। जमुना लाल बजाज का नाम आज बजाज ग्रुप से जुड़ा है, लेकिन ये ग्रुप एक दिन में नहीं बना। 1915 के आसपास जमुना लाल बजाज ने कॉटन ट्रेडिंग से शुरुआत की, रॉ कॉटन खरीदना, उसकी प्रोसेसिंग और फिर रीसेल। सिंपल बिजनेस, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन, कोई लग्जरी नहीं, कोई ब्रांड बिल्डिंग नहीं। उस समय भारत में कॉटन सबसे ज्यादा कॉमन था और जमुना लाल बजाज ने वही चुना। 1926 में इन्होंने बजाज स्पाइनिंग एंड वेविंग मिल्स की नींव रखी और यहीं से मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हुई। अब ध्यान दीजिए, ये कोई ग्लैमरस सेक्टर नहीं था। टेक्सटाइल बिजनेस मतलब हैवी कैपिटल, लेबर इश्यूज और स्लिम मार्जिन। लेकिन जमुना लाल बजाज ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखा, इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की। 1930s-40s में बजाज ग्रुप का फोकस रहा टेक्सटाइल, शुगर, पावर, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कंट्रोल एक्सपेंशन। हर बिजनेस फिजिकल एसिड बेस्ड था, नो टेक, नो कंज्यूमर ब्रांड। आज का बजाज ऑटो तब पिक्चर में ही नहीं था। टर्नओवर की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में एग्जैक्ट पब्लिक नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक 1940 तक बजाज इंटरप्राइजेस सेंट्रल इंडिया में मेजर टेक्सटाइल एम्प्लॉय बन चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद ग्रुप ने स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन शुरू की। 1960 से 1970 बजाज ऑटो का राइज हुआ, लेकिन वो चैप्टर जमुना लाल के बाद का है। जमुना लाल के टाइम तक बिजनेस का स्केल था, ब्रांड नहीं, ये समझना जरूरी है। इनका कंट्रीब्यूशन कंज्यूमर फेम नहीं था, फाउंडेशन था, फैक्ट्रीज थी, सप्लाई चेन्स थी, सिस्टम्स थे, और ये सब हाई रिस्क एनवायरनमेंट में बना। ब्रिटिश पॉलिटिक, रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, लेबर अनरेस्ट और जीरो गवर्नमेंट बैकिंग। और अब तक एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, उनका बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मशीन नहीं। मार्जिन थिन थे, ग्रोथ स्लो थी, रिटर्न स्टेडी था, फ्लैशी नहीं, और शायद यही वजह है कि बजाज ग्रुप सर्वाइव कर पाया। लेकिन सर्वाइवल इजी नहीं था, और क्यों इजी नहीं था, क्या स्ट्रगल्स थे, ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं गीत हूँ। हम बात कर रहे हैं जमुना लाल बजाज के बारे में। अब यहाँ पर स्ट्रगल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर कहानी से सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता बल्कि हमें एक रिस्क फैक्टर भी पता चलता है, फेलियर्स भी पता लगते हैं। जमुना लाल बजाज का बिजनेस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। 1915 के बाद इन्होंने कॉटन ट्रेडिंग में काम शुरू किया, रॉ कॉटन खरीदना, प्रोसेसिंग कराना और रीसेल। सिंपल सुनने में, लेकिन उस टाइम ये बिजनेस सबसे ज्यादा अनस्टेबल था। प्राइस रोज बदलता था, वेदर पर डिपेंड करता था, ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल थी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन। 1926 में इन्होंने बजाज स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स शुरू की और लेबर उस टाइम में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था। स्ट्राइक्स कॉमन थी, प्रोडक्टिविटी अनसर्टेन थी, फैक्ट्रीज चलाना रोमांटिक नहीं था, डेली हेडेक था, पावर सप्लाई इरेगुलर, ट्रांसपोर्ट वीक, फाइनेंस लिमिटेड, बैंक इजिली लोन नहीं देते थे। इसका मतलब ये था ग्रोथ स्लो होगी और स्लो ग्रोथ मींस प्रेशर। 1930s में ग्लोबल डिप्रेशन का असर भारत तक आया, डिमांड गिर गई, प्राइस कोलैप्स हुए, टेक्सटाइल सेक्टर हिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन फैक्ट्रीज बंद नहीं की गई, बिकॉज अगर बंद करते तो मजदूर बेरोजगार होते। बिजनेस डिसीजन वर्सेस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस और ये कॉन्फ्लिक्ट था। शुगर मिल का एक्सपेरिमेंट भी इजी नहीं था, सीजनल बिजनेस, वेदर डिपेंडेंट, लॉजिस्टिक हैवी और कैश फ्लो अनइवन। आज हम टर्नओवर्स नंबर की बात करते हैं, 280 अरब 25 कंपनियां, लेकिन जमुना लाल के समय में ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस समय सक्सेस का मतलब था फैक्ट्रीज चल रही है या नहीं, सैलरी जा रही है या नहीं। तो उस टाइम सिस्टम को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सर्वाइवल इन्हें पर्सनली बहुत हैवी पड़ा। पॉलिटिक्स प्रेशर, जेल विजिट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और यहीं से शुरू होता है इनका सबसे टफ फेज, जहां बिजनेस, फ्रीडम स्ट्रगल और पर्सनल सेक्रीफाइस तीनों एक साथ टकरा जाते हैं, और यही है इनकी असली स्ट्रगल। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और बात हो रही है जमना लाल बजाज के बारे में। न इन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला खोजा, ना ही किसी ओवरनाइट आइडिया पर करोड़ बना लिए। इन्होंने बस तीन चीजें कंसिस्टेंटली की। पहली बार बिजनेस को स्लो रखा, नो हरी, नो हाइप, नो शॉर्टकट्स। आज हम स्टार्टअप कल्चर में फास्ट ग्रोथ, फास्ट वैल्यूएशन की बात करते हैं, लेकिन बजाज की नींव पेशेंस पर रखी गई थी। दूसरी, उन्होंने बिजनेस को रियल एसेट्स पर खड़ा किया, फैक्ट्रीज, मशीन, पीपल, नो बज वर्ड्स, नो ट्रेंड्स। और यही वजह है कि बजाज सिर्फ ब्रांड नहीं, इंस्टीट्यूशन बना। इन्होंने ओनरशिप को ईगो नहीं बनाया। इनके लिए बिजनेस स्टेटस सिंबल नहीं था, वो खुद को सिस्टम का केयर टेकर मानते थे और सिस्टम जनरेशन के लिए बनाया जाता है, इंस्टाग्राम के लिए नहीं। आज जब हम बजाज ग्रुप की बात करते हैं तो बात करते हैं सिर्फ स्कूटर्स या फैंस की नहीं। आज बजाज ग्रुप में 25 प्लस कंपनीज है, ऑटो, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल्स, एनर्जी। ये 100 साल के कंसिस्टेंट डिसीजन का रिजल्ट है। और ये भी याद रखना जरूरी है, ये जर्नी परफेक्ट नहीं थी। लॉस हुए, ग्राउंड स्लो रही, प्रेशर रहा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर थी और यही क्लैरिटी बिजनेस को टिकाऊ बनाती है। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो इस कहानी से एक सिंपल टेक अवे रखिए। आपको सबसे पहले यूनिकॉर्न नहीं बनना है, आपको सबसे पहले सरवाइव करना है। सिस्टम बनाइए, फाउंडेशन मजबूत रखिए, ग्रोथ को टाइम दीजिए। जमना लाल बजाज की कहानी ये नहीं कहती सब छोड़ दो और महान बन जाओ, ये कहती है काम करो, धीरे करो, लेकिन सही करो। और जब काम सही होता है तो रिजल्ट अपने आप बोलता है। आज बजाज ग्रुप उसका प्रूफ है। बिजनेस अनप्लग में आप मुझे सुन रहे थे, यानी कि गीत को। अब वक्त है इजाजत लेने का। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।
1: दो दो कुड़े महगनानी, चार जी वहगनानी, उत्ते नू मैं शीशे चक्कियां, टाइम लगू मिटने।

0: क्या आपने कभी नोटिस किया है
1: जब कोई ज्यादा सुंदर लगे, ज्यादा खुश लगे या फिर ज्यादा चमकने लगे तो कोई ना कोई बोल ही देता है, अरे नजर लग जाएगी। और बस एक काला टीका या तो कान के पीछे या फिर गाल पर लगा ही दिया जाता है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करेंगे उस काले निशान की जो दिखने में छोटा जरूर है पर माना जाता है बहुत पावरफुल, वही नजर का टीका। कहा है काला सा निशान पर नीयत बहुत साफ। अब बात कर ही रहे हैं नजर के टीके के बारे में तो जान लेते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आखिर कहां से आया। पर इससे पहले सवाल ये है, क्या नजर सच में लगती है या सिर्फ डर की कहानी है? तो माना जाता है कि नजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, मिडल ईस्ट, ग्रीस, टर्की, इवन इटली, हर जगह मिलता है। कहीं ब्लू आई, कहीं ब्लैक डॉट और कहीं काजल। मतलब सीधा सा है कि इंसान हमेशा से मानता आया है कि नेगेटिव अटेंशन का असर जरूर पड़ता है। वो कहा है कि जहां तारीफ वही नजर का डर पैदा होता है। पर अब सवाल ये है कि काला रंग ही क्यों? इस बारे में ही बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या कभी सोचा है कि टीका हमेशा काला ही क्यों होता है? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं नजर के टीके के बारे में, जान रहे हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और आखिर इसका रंग काला ही क्यों होता है। तो कहा जाता है इंडियन बिलीफ के मुताबिक काला रंग नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करता है, इसलिए बच्चों को काला धागा, गाल पर काला टीका, कान के पीछे काला काजल लगाया जाता है। कहा जाता है कि काले रंग से ब्यूटी को थोड़ा इम्परफेक्ट बना दिया जाता है, ताकि बुरी नजर भी सोच में पड़ जाए कि कहाँ जाऊं। वो कहा है कि थोड़ी सी कमी अक्सर बड़ी बला से बचा लेती है। अब रंग की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर नजर का बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले नजर अगर किसी को लगती है तो वो है बच्चे। सोच के जरूर देखिएगा, जब भी कभी हम किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, तो बोलते हैं बड़ा ही प्यारा है, और माँ तुरंत टीका लगा देती है। ये माँ का डर नहीं, माँ की दुआ होती है। वो कहा है कि माँ का लगाया टीका दुआ बनकर साथ चलता है। लेकिन अगर बात की जाए नजर की, तो नजर ने शादी और रस्मों को भी नहीं छोड़ा। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

वो कहा है कि जब खुशी पब्लिक हो जाए तो हिफाजत प्राइवेट रखी जाती है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ कल्चर कारवा का आज का सफर आपको ले आया है काले टीके के कॉन्सेप्ट के पास। तो अक्सर माना जाता है अगर कोई फंक्शन है जहाँ नजर का डर सबसे ज्यादा होता है तो वो है शादी। दुल्हन को काजल, दहेज के साथ नजर उतारना, शादी के बाद नींबू मिर्ची, ये बेहद जरूरी होते हैं। लोग भले ही इसे सुपरस्टिशियस बताए पर असल में तो ये प्रोटेक्शन का आइडिया था। शादी के टाइम नजर लगना बेहद कॉमन है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शादी में एक रस्म भी होती है जिसे कहा जाता है नजर उतारने की रस्में। यहाँ सिर्फ काला टीका ही नहीं बल्कि नजर उतारने का एक खास तरीका भी होता है, जैसे कहीं कहीं नमक मिर्ची घुमाना, लाल कपड़ा पहनाना, सरसों के दाने के साथ कभी पानी में फूंक मारना। लॉजिक चाहे ना मिले पर तसल्ली जरूर मिलती है। वो कहा है कि कुछ चीजें दिमाग के लिए नहीं दिल के लिए होती हैं। अब बात कर ही रहे हैं लॉजिक की तो थोड़ा साइंस भी जान ही लेते हैं। अब जब रस्मों की बात सुन ही ली है तो थोड़ा साइंस की भी सुन लेते हैं। तो कहा जाता है साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई बार बार नेगेटिव बातें सुनता है तो कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और नजर का कॉन्सेप्ट लोगों को इमोशनली वीक बनाता है। वो कहा है कि हर बात साइंस से नहीं कुछ बात संवेदना से समझी जाती है। और अगर बात की जाए नजर की तो नजर तब से लेकर आज तक हर जमाने में देखने को मिली, आज के जमाने में भी नजर लगती है, बस फॉर्म थोड़ा सा बदल गया है। साइंस मीडिया पर लाइक्स के थ्रू कमेंट्स, कंपैरिजन, ये सब नजर का मॉडर्न वर्जन आ गया है, इसलिए लोग बोलते हैं नजर से बच के। वो कहा है कि आज नजर आंखों से कम स्क्रीन से ज्यादा लगती है। नजर से जुड़े और भी फैक्ट्स हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कल्चर कारवा सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे अंजलि, और आज हम बात कर रहे हैं नजर के काले टीके के बारे में। तो कहा जाता है औरतों ने इस बिलीफ को जिंदा रखा। माँ, दादी, नानी, उनकी बातों में डर भले ही था पर केयर उतनी ही थी। नजर का टीका उनका साइलेंट प्रोटेक्शन था। वो कहा है कि जब घर की औरतें टीका लगाती हैं तो समझ लो कि दुआ साथ भेजती हैं। अब बात ये है, क्या नजर सच में होती है? तो शायद हाँ शायद नहीं, पर ये जरूर सच है कि ये किसी की परवाह का निशान होती है। वो कहा है कि नजर का टीका काला हो सकता है पर सोच हमेशा रोशन होती है। कल्चर कारवा के आज के सफर में हमने बात की एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत पुराना है लेकिन आज भी लोगों के साथ चलता है। हमारी जिंदगी का हर रोज का पहलू इसी से होकर गुजरता है। आज हमने बात की काले टीके के बारे में और जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी की केयर करना एक छोटे से निशान के साथ। कल फिर मिलेंगे कल्चर कारवा के सफर में एक नई कहानी के साथ, एक नए बिलीफ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, जो प्यार दिल से दिया जाए उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: ये है रेडियो महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: एक नंबर है 7 और उसको कहते हैं थाला फॉर अ रीजन। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा। आप सभी के साथ बारिश हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा काफ़ी सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये सब तो बाद में बात करते रहेंगे। बस मैं ये बताने आया था कि मैं आ गया हूँ और अब आप लोगों के साथ खूब सारी मस्ती होने वाली है। मगर उससे पहले गाना चलेगा और वो गाना है करण औजला की आवाज़।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: अम अधूमा थिंग ये गाने का नाम था, और अगर इसे हिंदी में अनुवाद कर दें इसका तो बोला जाएगा कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? थर्सडे की शाम है, गौरव मेरा नाम है, आप सभी के साथ आ गया हूँ। एंड देखो, मे भी बारिश आ जाए, आज नहीं तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला सब कुछ बताऊँगा। और इसी के साथ साथ NCR को डिवाइड करने की बात हो रही है, ऑल टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा NCR को। और NCR की बात आई तो NCR के ट्रैफिक के बारे में बात कैसी नहीं होगी, और फरीदाबाद और गुड़गांव के टोल प्लाजा के बारे में भी बातें होंगी। और देखो, साथ ही साथ दिल्ली NCR के मौसम के बारे में बात कर लेंगे। एंड यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि मार्केट में AI ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। AI म्यूजिक से लेकर AI ग्लासेस तक, नहीं वो पानी पीने वाले ग्लास नहीं बोल रहा हूँ मैं, आईवेयर सन ग्लासेस भी नहीं, दूसरे वाले ग्लासेस कौन से हैं ये AI ग्लासेस, तो इन सब चीज़ों के बारे में करने वाला हूँ मैं आप सभी के साथ बात। तो देखो, अब अगले 3 घंटों तक मैं तो आप सभी के साथ हूँ, तो अगर आप लोगों को फरीदाबाद में किसी भी चीज़ से कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग वो चीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए रेडियो महारानी, तो आप लोग अपनी दिक्कतें शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और लोगों तक ये बात पहुंचे। और ये कैसे पहुंच सकती है, आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा या फिर मैसेज करना पड़ेगा। नंबर है हमारा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप लोग हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं।

हैं। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डलाने के बाद टंकी के पास चींटियां आ गई, करेंगे इसके बारे में भी बात। तो ये थी सारी की सारी निचोड़ के आज के शो में होने का क्या वाला है। तो इसके अलावा और जो भी बातें होंगी वो होती रहेंगी, मगर उससे पहले गाने भी चलेंगे और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है इसकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड कर दी जाएगी। MC Square की आवाज़ में आप सभी के लिए ये गाना लाडो।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
5: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

काम डाउन तो होना पड़ेगा क्योंकि 18 जून यानी कि आज के दिन दिल्ली NCR में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है, बारिश नहीं आएगी तो तूफान की संभावना है, वो भी रात के टाइम आंधी तूफान की, ये थोड़े से आसार हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा बट हो सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड देखो यार, शाम होती है ना, फिर उसके बाद सबका मन करता है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाए क्योंकि इतनी गर्मी अब झेल ही नहीं जा रही है। टेम्परेचर भले ही कम है बट हाँ है दिक्कत। देखो आप बता दूँ आपको, एक ना पूरा कंप्रेशन जोन बन रहा है, डिप्रेशन जोन बन रहा है कह सकते हो, लोगों को डिप्रेशन नहीं हो रहा, डिप्रेशन जोन मीन्स आसमान में डिप्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से कल 19 तारीख 20 तारीख और 21 तारीख को ये संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री तक आ जाए और हो सकता है कि बारिश भी आ सकती है। खैर ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है और ये प्री मानसून शावर्स कहे जा रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो फिर अच्छा ही है और ऐसा होना ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो बारिश हो रही है और उसके अगले दिन जो धूप निकल रही है ना, फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है। एक बार को लू वाली गर्मी झेली जा रही थी मगर ये गर्मी नहीं झेली जा रही, तो हे इंद्रदेव थोड़ा सा प्रकट हो जाइए और बारिश की बौछार कर दीजिए दिल्ली NCR में, बस इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। चलिए अभी फिलहाल NCR की बात आई गई है तो NCR को डिवाइड किया जा रहा है 3 जोन्स में, कौन से है वो 3 जोन्स करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

ये गाना न जाने क्यों मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था तो वो यही है कि एनसीआर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, मेन कोर एरिया को वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा और पूरे एनसीआर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। मतलब पूरे एनसीआर में जितने भी जिले आते हैं ना, उन सभी जिलों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके अलावा चार नए ग्रीन फील्ड जोन बनाए जाएंगे, और ग्रीन फील्ड शहर कह सकते हो आप लोग। जैसे फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड एरिया है ना, आपने देखा होगा हरियाली भी है उस साइड, बट थोड़ी सी पानी की कमी थी लास्ट टाइम जब मैंने सुना था, अब उसको साइड कर देते हैं। तो चार नए ग्रीन फील्ड शहर बनेंगे जिनका नाम नमो शहर कहा जाएगा। इसके अलावा अरावली एरिया को भी संरक्षण मिलेगा, वहाँ पर भी गैरकानूनी काम करने की कोई इजाज़त नहीं होगी। गैरकानूनी ऐसा कि अनऑथराइज्ड अगर कोई बिल्डिंग बनती है वो चीज़ अलाउड नहीं होगी। और सारे के सारे एरिया को हाईवे से जोड़ा जाएगा। कुंडली गाज़ियाबाद परवल, कुंडली मानेसर परवल से नेटवर्क कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव करी जाएगी, और पोल्यूशन पर कंट्रोल के लिए कुछ कड़े नियम भी लागू किए जाएंगे, और साथ ही साथ ग्रीन कवर को भी बढ़ाया जाएगा। तो इस वजह से दिल्ली एनसीआर को तीन हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा ग्रीनर एनसीआर हो और थोड़ा सा स्वच्छ एनसीआर हो जाए। तो बस ये कहूँगा कि अपने फरीदाबाद को और स्वच्छ रखने में थोड़ा सा योगदान दीजिए अपनी तरफ से भी। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना डीनो जेम्स की आवाज़ में रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कार कर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।
2: Oh, so-

क्या आपको याद है कि सब लोग बोल रहे थे कि फरीदाबाद गुड़गांव टोल प्लाजा 12 जून को बंद होने वाला है, मगर जैसे ही 12 जून आई तो फिर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अब हरियाणा गवर्नमेंट ने टोल को एक्सटेंड कर दिया है, बनवाड़ी टोल और नूनेड़ा जो एक टोल प्लाजा जो सोना और बल्लभगढ़ रोड पर पड़ता है, तो इन दोनों की टोल प्लाजा की डेट्स 2 जुलाई 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है और कहा जा रहा है कि 2 जुलाई के बाद ये पूरी की पूरी तरह से टोल फ्री हो जाएगी रोड। और मुझे ऐसा लगता है, देखो दिल्ली से फरीदाबाद आने वाले लोग काफ़ी बार फरीदाबाद गुड़गांव से ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि देखो दिल्ली से कनेक्टिविटी एक तो बदरपुर से है, दूसरी साइड नोएडा की तरफ से आना पड़ता है उन्हें, फिर तीसरा साइड है यही वाला यानी कि गुड़गांव फरीदाबाद रोड। और जब इससे टोल हट जाएगा तो लोग इसी से आना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखो शॉर्ट भी है, रोड चौड़ी भी है एंड नो डाउट स्पीड भी अच्छी रहती है इसमें गाड़ियों की। तो मैं बस यही प्रे करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये टोल ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद सभी लोगों को एक कहते हैं ना स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाए फरीदाबाद गुड़गांव रोड का। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, एनसीआर की बात कर ही रहे हैं तो एनसीआर के वेदर के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत हो ही जाएगी इस गाने के बाद। मेरी

0: गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है। और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

एनसीआर के वेदर की मैं बात करूं तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये बोला कि डिप्रेशन बन रहा है इस जोन में और बारिश इस बार जरूर होगी। इसके अलावा कुछ ने बोला कि एलनीनो इफेक्ट की वजह से बारिश इस बार नहीं होगी। मगर देखो, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा या नहीं होगा, मगर मैं इतना तो बता सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अगर आप इस टाइम गूगल पर सर्च करेंगे फरीदाबाद वेदर, तो आपको दिखाएगा कि कल का टेम्परेचर मैक्सिमम 39 डिग्री पहुंचने वाला है और आज का मैक्सिमम 39 ही था, बट इट वॉज फीलिंग एज इफ इट्स लाइक 44 और 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताता हूँ एक सिंपल सी बात, और वो ये है कि फरीदाबाद का जब आप वेदर ढूंढेंगे ना, तो आपको 3-4 वेबसाइट्स भी मिलेगी। एक तो गूगल अपनी तरफ से बता देता है, उसके अलावा और जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनका ये कहना है कि कल बारिश हो सकती है और आज रात को आंधी आ सकती है। मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक देखो आएगी नहीं ना, तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। एंड अगर मैं बात करूँ इस वीकेंड की, तो इस वीकेंड को कहा जा रहा है कि टेम्परेचर 41 डिग्री तक पहुँच सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, बट मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हाँ थोड़े बहुत बादल आ जाए, क्योंकि आज दिन में भी बादल जब आ रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि चलो यार बादल आ ही रहे हैं, क्या पता एक बड़ा काला बादल आ जाए और थोड़ी सी बरसात करके चले जाए। थोड़ी सी बरसात से वैसे कुछ होने नहीं वाला, ज़्यादा बरसात चाहिए। खैर, दिल्ली एनसीआर के बारे में बात हो रही है, तो एनसीआर के ट्रैफिक और रोडरेज के बारे में बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
5: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: दिल्ली NCR में जब भी आप गाड़ी चलाते हो और अगर आपकी गाड़ी किसी और से टकरा जाए और नहीं भी टकराए ना, तो भी सामने वाला ये बोलता है जानता तू मैं कौन हूँ जैसे वो खुद को नहीं जानता कि वो कौन है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और दिल्ली NCR में ट्रैफिक सिर्फ एक सिचुएशन नहीं है, यानी कि एक्चुअली में एक इमोशन है। कभी कभी लगता है कि गाड़ी कम और पेशेंस ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमारा पेशेंस कितना सा है, इतना सा है, तुरंत पेशेंस खत्म हो जाता है और लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। फिर दूसरा वाला कहता है भाई हॉर्न क्या बजा रहा, उड़ के जाएगा क्या, क्योंकि आगे से जगह तो होती नहीं है। तो ऐसा ही होता है दिल्ली NCR में। और NCR का ट्रैफिक ऐसा है कि गूगल मैप्स भी कभी कभी बोल देता है कि भाई मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तू अपने आप से देख ले, तू तो रोज़ आना जाता है, तो तू अपने आप से डिसाइड कर ले कि तेरे को इस रोड से जाना है या फिर नहीं जाना। क्योंकि फरीदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो फरीदाबाद में ही काफ़ी सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे बने हैं जहाँ रोज़ आपको ट्रैफिक मिलेगा, मगर गूगल मैप पे जब आप खोल के देखेंगे तो आपको शायद वहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग जब भी ऑफिस से वापस आते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको किस जगह पर मिलता है? नंबर है जी मेरा 9654896896। ये तो बात होगी हॉटस्पॉट्स की, मगर कुछ ऐसी जगह बताइए जहाँ पर आप कभी भी ट्रैफिक नहीं देखते थे मगर अभी कुछ टाइम से ट्रैफिक देखना शुरू कर दिया आप लोगों ने, एज ए फील करना शुरू कर दिया कि हाँ यहाँ पर भी ट्रैफिक लगने लग गया। नंबर वही है 9654896896। कॉल उठाने में देरी हो सकती है मगर हाँ मैसेज तो पढ़ने में देरी कभी नहीं होगी ना, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए हमें व्हाट्सएप पर। नंबर वही है। अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, मिक्स मैशअप ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।
1: I've been drinking raw alcohol for the past 5 days. Did you check on me?

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

जस्ट इमेजिन कि आप लोग एक नया गाना सुन रहे हो और कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि ये तो किसी इंसान ने गाया ही नहीं है, ये एक्चुअली में सिंगर है ही नहीं बल्कि एआई ने बनाया है। क्या आपको फर्क पता चलेगा? स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और फर्क पता चलेगा ये नहीं पूछूंगा, मैं बोलूंगा क्या आपको फर्क पड़ेगा कि इंसान ने गाया है किसी और ने गाया है। खैर, ये जो गाना था ये तो आदित्य रिखाड़ी की आवाज में था, ये एक ह्यूमन है, बट स्टिल 10 सेकंड में 100 गाने बना सकता है एआई। मगर सिंगर क्या बोल रहा है, ठीक है लेकिन ब्रेकअप के बाद जो होता है फिर उसके बाद में फीलिंग्स के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद जनरेट करेंगे गाना, मगर एआई तुरंत गाना जनरेट कर देता है। और एआई क्या बोलता है आपको, लो जी गाना रेडी है, मगर ह्यूमन सिंगर्स बहुत टाइम लगाते हैं और इमोशंस भी लोड करते हैं। और इसी के साथ साथ आजकल एआई इतना ज़्यादा हाथ से निकल चुका है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपकी आवाज़ में एक बहुत ही बेहतरीन सुरीला गाना बना देगा एआई। बट आजकल क्या हो रहा है, हमारे जो लेजेंड थे एक सिद्धू मूसेवाला, उनकी आवाज़ में भी एआई मेड गाने बन रहे हैं और वो भी लाइक कोई पुराने गाने बना रहा है, कोई नए गाने बना रहा है, कोई डिफरेंट ही लिरिक्स के गाने बना रहा है। तो सिद्धू मूसेवाला भले ही हमारे बीच में नहीं है, मगर हाँ उनकी आवाज़ के गाने भी बन रहे हैं। एंड इनफैक्ट किशोर कुमार की आवाज़ में भी आजकल गाने बन रहे हैं। तो एआई जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि डेंजरस है, तो डेंजरस के साथ साथ एआई यूज़फुल भी है। अब वही बात है कि किसके हाथ में एआई है वो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर एक चीज़ प्रोडक्टिव है तो वही चीज़ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है अगर सही हाथ में ना हो तो। तो चलिए आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक, एआई सिंगर्स अच्छे हैं या फिर ह्यूमन सिंगर्स ज़्यादा अच्छे हैं? नंबर वही है 9654896896। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर आदित्य रिखाड़ी की आवाज़ में ही गाना जो अभी चलाया था वो कंप्लीट होगा।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

एआई की बात कर रहे थे हम लोग, और एआई इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि हमारे फोन में एआई, हमारे फोन के कैमरे में एआई, और गैलरी तक में एआई आ चुका है। आपको किसी को फोटो से हटाना है वो भी हो जाएगा, आपको किसी को वीडियो में लाना है वो भी एआई के थ्रू हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि एआई हर जगह आ रहा है, तो फिर जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने चश्मे में एआई को डाल दें, और अब आ चुके हैं एआई स्मार्ट ग्लासेस। ऑल्दो लास्ट ईयर से आ चुका था, बट लास्ट ईयर जो आए थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, और फिर अब जो आ रखे हैं उनमें आप लोगों को बस एक बार बोलना पड़ेगा कि हे, जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी का नाम आपको बोलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट आपके चश्मे के अंदर एआर ग्लासेस होएगा। एआर मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब सामने वाले इंसान को कुछ नहीं दिखेगा, बट हाँ आपको अपनी आंखों से दिख रहा होगा कि आपके सामने एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन बन चुकी है, आप उसमें गेम्स खेल सकते हैं, आप उसमें किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, मगर सामने वाले इंसान को पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या देख रहे हैं, आपको सामने वाला इंसान भी दिखाई देगा। बट अभी रिसेंटली एक और जनरेशन फोर्थ का एक और एआई ग्लासेस आ रहे हैं, जिसमें आपके सामने पूरी की पूरी आपकी मोबाइल स्क्रीन आ जाएगी, सामने वाले इंसान को वो नहीं दिखेगी, और उसके साथ आएगा एक बैंड जो आप अपने हाथ पे बांधेंगे, रिस्ट पे बांधेंगे, और फिर उसके थ्रू आप पूरी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी रिस्ट राइट ट्विस्ट करोगे तो वो कर्सर राइट की तरफ मुड़ेगा, लेफ्ट ट्विस्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, अभी एआई की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि साल 2025 का जो एआई था वो 10 साल पुराना है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एआई अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एंड नो वंडर साल 2027 में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। एआई की बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, मगर हाँ मेसी की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि किसी ने उसको थाला एज अ थाला पोस्ट कर दिया है। कहाँ पर बताऊँगा मगर इस जाने के बाद।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर.
5: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं.
6: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला.
5: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें. किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें. बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें. मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें. हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें.
7: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. तो अब से बी सेफ, बी अवेयर.

who CR7 is? Like Ronaldo bro, Cristiano Ronaldo 7 number, मगर थाला किसी और को दे दिया गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी रिसेंटली फीफा की तरफ से ऑफिशियल वर्ल्ड कप अकाउंट से किसको थाला बोला गया है पता आपको? MESSI, लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना से खेलते हैं और फीफा वर्ल्ड कप के अकाउंट से जब ये पोस्ट हुआ सबको हैरानी हुई कि यार इंडियन वर्ड थाला, इंडियन भी साउथ इंडियन वर्ड थाला ये बोलूँगा, एग्जैक्ट एक जगह से बोलूँगा, चेन्नई की तरफ से खेलते हैं हमारे MS धोनी, उनको थाला कहते हैं सब लोग, और थाला मीन्स बड़ा भाई, सबसे बड़ा सुपरस्टार। हाँ तो सुपरस्टार होता है थलाइवा, बट थाला इज़ लाइक हम सबको पता है बड़ा भाई। तो आप सभी को पता है मेस्सी बन गया अब थाला और सब लोग इसकी वाहवाही कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं देखो इंडिया भले ही क्वालिफाई नहीं कर पाई मगर हाँ इंडिया ने मेंटली क्वालिफाई ज़रूर कर लिया है। और मेरे दोस्त इस टाइम ना बहुत सारे देख रहे हैं वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, मैं इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आता लाइक कौन किसकी टीम में है। ठीक है चल रहा है चलन दो, बट स्टिल मज़ा तो बहुत आता है वैसे देखने में फुटबॉल और रूल्स मुझे पता है, मैंने खेला भी हुआ फुटबॉल, बट मज़ा नहीं, मतलब मेरे को क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और खैर अगर मैंने रोनाल्डो की बात करी है तो रोनाल्डो भैया कुछ नहीं कर पाए अपने पहले मैच में और फैंस ने उन्हें ट्रोल कर दिया, मतलब ग्राउंड के अंदर मेस्सी मेस्सी के नारे लगा रहे हैं लोग और वहाँ पर रोनाल्डो से सिर्फ एक गोल मिस हुआ था, लाइक एक भी गोल नहीं कर पाए तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए, आप सभी के लिए एक मिक्स मैशअप तो नहीं है ये, इस गाने का नाम है वो, इक्का डिनो जेम्स और बादशाह की आवाज़ में, सुनिए इस गाने को।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आपके पास भी वो वीडियो आई जिसमें एक बॉटल के अंदर पेट्रोल डाला गया था और बोला जा रहा था कि ये E20 पेट्रोल है और इसके थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे के बाद में उसमें जो एथेनॉल था वो नीचे सेटल होने लग जा रहा है, ऐसा वीडियो में क्लेम किया जा रहा था, मगर सच्चाई कुछ और है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आई डोंट नो क्या मिल जाता है ये सब करके लोगों को, लाइक वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं और फिर उसके बाद जब इसका फैक्ट चेक होता है तो कुछ और ही निकलता है। तो उन लोगों ने वीडियो बनाई थी कि हमने E20 पेट्रोल लिया है और देखना है आधे घंटे के बाद उसमें एथेनॉल अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, और उस वीडियो में तो हुआ। बट जैसे ही एक और क्रिएटर ने सेम टू सेम यही चीज़ करी, उसने E20 पेट्रोल उठाया मार्केट से और फिर उसके बाद एक घंटा रुका, आधा घंटा भी नहीं, एक घंटा रुका, बल्कि धूप में और बॉटल को रखा, उसने कहा देख लो अभी तक कुछ भी चीज़ सेपरेट नहीं हुई है। और फिर उसके बाद आती है वीडियो जिसमें गाड़ी की टैंक के पास, मतलब फ्यूल टैंक के पास चींटियाँ हैं बहुत सारी। तो फिर उसके बाद उसने ये भी करके दिखाया कि अपन E20 पेट्रोल को पूरी गाड़ी पे उसने छिड़क के दिखाया और साथ ही साथ ज़मीन पर भी छिड़क के दिखाया, मगर चींटियों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। ऑल दो आसपास बहुत सारी चींटियाँ घूम रही थी, बट हाँ पेट्रोल के आसपास कहीं पर भी कोई चींटी नहीं आई। तो एथेनॉल में गन्ने का रस नहीं मिला हुआ, वो गन्ने का बाय प्रोडक्ट है, मतलब गन्ने के जूस का बाय प्रोडक्ट है एथेनॉल, तो उसमें मिठास नहीं होती यार, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अभी आप लोग बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, E20 पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल वर्सेस EV यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। मैं तो वोट करूंगा EV को क्योंकि फ्यूचर इज EV। अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। और हाँ, कहाँ रिप्लाई दे सकते हो, हमारे रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए, वहाँ पर खूब सारी बातचीत करते हैं। और उसी के साथ साथ एक गाना भी चलाता हूँ आप लोगों के लिए, और ये है गाना किंग की आवाज में, कार्निवल द लास्ट राइड। King.

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: इंतजार ही नहीं है।
1: I'm done. दिल में अब कोई ख्याल ही नहीं है। मान फानू की आवाज़ में गाना था, गाने का नाम था I'm done, और मैं भी done हूँ क्योंकि मेट्रो में रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई ये सीट खाली है? कहता हाँ खाली है। मैंने पूछा फिर बैग क्यों रखा हुआ है यार इसमें, मुझे बैठने दे। क्योंकि उस बंदे ने बैग रखा हुआ तो मुझे ऐसा लगा उसका कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है, कहीं गया होगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। दिल्ली मेट्रो क्या है, ट्रांसपोर्ट है? नहीं नहीं नहीं नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये पूरी सोशल मीडिया सीरीज है। कभी कोई रील बना रहा होता है, कभी कोई फ़ोन पर पूरे कोच को अपनी पूरी की पूरी फैमिली की अपडेट देता है कि नहीं। मतलब अब फ़ोन पर चिल्ला रहा होता, हाँ मम्मी दाल चावल बना देना, हाँ मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। नहीं नहीं आपकी बहू नहीं आ रही, मैं अकेला आ रहा हूँ, बच्चे भी नहीं आ रहे। यार क्यों चिल्लाते हैं मेट्रो के अंदर, समझ नहीं आता। और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होती है, प्लीज़ माइंड द गैप। मगर ये अनाउंसमेंट भी होनी चाहिए कि प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि जब आप लोग फ़ोन चलाते हैं दिल्ली मेट्रो के अंदर तो फिर आप लोग भी पाएंगे कि आपके आसपास के जो इंसान बैठे हुए हैं वो अपने फ़ोन से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके फ़ोन में क्या चल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने दोस्त को मैसेज करना है, देख मैं मेट्रो में हूँ और एक पागल मेरे फ़ोन के अंदर झांक रहा है। पागल के अलावा आप अच्छा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लाइक एक होशियार आदमी मेरे फ़ोन के अंदर झांक रहा है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग। बस ये ना दिल्ली मेट्रो के एटिकेट्स होते हैं जो लोगों को रखने चाहिए। और गैप तो ठीक है, पहले भीड़ से तो बचाओ, क्योंकि प्लीज़ माइंड द गैप। भीड़ अंदर घुसने दे तब तो, मतलब जब आप अंदर घुस रहे हो तो बाहर धकेल देती है, बाहर जा रहे हो तो अंदर धकेल देती है, वो सबके साथ होता है ये सब। तो चलिए दिल्ली मेट्रो का स्ट्रगल तो जारी रहेगा, मगर उसी के साथ साथ हमारा भी सफ़र जारी रहेगा। और गाने चलेंगे आप सभी के लिए, और उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
2: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई बस आ गई।
1: सुनो सुनो है

ध्वनि भानुशाली की आवाज में था ये गाना थैंक यू गॉड। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा थैंक यू गॉड आपने इतना अच्छा दिन दिखाया मुझे, थैंक यू गॉड आपने ये सब चीजें दी मुझे। एक्चुअली लेजेंड्स हैं, जापानीज लेजेंड है, उनका कहना है कि आप लोगों को हर चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और भगवान का जब आप शुक्रिया अदा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। मैं शुक्रिया अदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो फिर ना आप पॉजिटिविटी में रहोगे, पॉजिटिविटी में रहोगे तो आपका मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा तो आप काम अच्छे से कर पाओगे, काम अच्छे से करोगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे से मिलेंगे, है कि नहीं। तो बस यही कहना चाहता था कि हाँ आप लोग पॉजिटिव रहिए और सबका शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ हमारे पास जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। अब इतनी सारी पॉजिटिविटी वाली बात हो गई, मैं कोई माइंड कोच नहीं हूँ, मैं कोई हेल्थ कोच नहीं हूँ, मैं कोई फिटनेस कोच नहीं हूँ, मैं कोई क्या बोलते हैं उसे, हाँ संदीप महेश्वरी।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

किताबों के पन्नों में कैद रहते हैं। कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूब कर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेते हैं।

लफ्जों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आह नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में, जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है, और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन और माइनस हो जाएगा।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

जैसे अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए, पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं, मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप वही है जो सिर्फ महसूस हो, जिसमें पाने की जिद ना हो, बस चाहने की ख्वाहिश हो। और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी की शायरी में हमें मोहब्बत एक सुकून और दर्द के साथ मिलती है। 1913 में लुधियाना में इनका जन्म हुआ। बचपन में पिता से अलगाव, जवानी में मोहब्बत की नाकामी और तन्हाई, इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना है, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ अधूरा रह गया और ये सब जानते हैं, लेकिन इस अधूरेपन ने उनकी शायरी को अमर कर दिया। मतलब यार, ये शायरों की खास बात होती थी कि वो अपनी मोहब्बत बेशक अधूरी छोड़ दें लेकिन पन्ने जरूर भर दिया करते थे उसी मोहब्बत के नाम जो अधूरी रह गई। ऐसे इनके कुछ किस्से हैं जो बहुत ही खास हैं, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं इन्होंने जो लिखा है उस पर, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो ये परेशानी है भाई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी मत होना, ये पहली शर्त प्यार की होती है, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोल पे रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश

चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं। बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज़्म-ए-शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक

निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिले गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहां वो बादशाहत की ताकत के निशान है, वहां मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से, वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया। मुझे पता

पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

है, ये एआई की आवाज है, किशोरदा की आवाज नहीं है, लेकिन है। जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोरदा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी, जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोरदा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
1: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो, है

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए? ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिसे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
1: काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: दीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड कर

0: रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही तो हो, ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई भरोसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: आपका बताओ।
1: काम सीधा साधा है।
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी और तुमसे?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो
0: ना ना।
1: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: ओ जी देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: जरा आप मुस्कुराइए,
1: जरा आप मुस्कुराइए,
2: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: नसीब हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
2: सुनो सुनो।

0: दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।